0: हर पल जिंदगी का बस दुआ है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।
1: नमस्कार मित्रांनो, मी आहे आर्या चिलका, आपण ऐकत आहात रेडियो नगर 90.4 एफएम, आवाज तुमचा।

0: नहीं नाते आए हृदया से मनाते मीत हो गीत गाओ अपुलिया धोती से
1: पिकनिक
0: यारे या सारे या खुशी ने नाचया

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए खुल्लम।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।